0: information and latest school report to the school's email address admin@salama.nsw.edu.au. The last day for accepting applications is on the 26th of June 2026. Please hurry as our numbers are filling up fast and places are limited. For further information, please visit our website at www.salama.nsw.edu.au or call the school's administration office on 02-8760-1000.
1: अगर आप इस साल हज के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं तो मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के खतरे को कम करें। इसे मर्स भी कहा जाता है और ये एक गैर मामूली मगर सांस की शदीद बीमारी है। इलामात में बुखार, खांसी, सांस लेने में नई तकलीफ और दस्त शामिल है। खुद को महफूज रखने के लिए बीमार अफराद ऊँट, ऊँट के कच्चे दूध, कच्चे गोश्त और पेशाब से दूर रहें और बाकायदगी से अपने हाथ धोते रहें। अगर सफर के दौरान आपकी तबीयत नासाज हो तो जहाज के अमले या एयरपोर्ट के अमले को मुतला करें। अगर ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद आप में मर्ज की अलामत जाहिर हों तो फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रजू करें और इन्हें अपनी साबका सफरी तफसीलात से आगाह करें। सफरी हदायात के लिए smarttraveler.gov.au मुलाहिजा करें। मजीद मालूमात के लिए health.gov.au/mers मुलाहिजा करें। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के महकमा सेहत, मजूरी और बबूदो ज़ईफ अल अमरी, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, डिसेबिलिटी एंड एजिंग की जानिब से एक पैगाम।
2: मदारिस अल अमानह لكل ما يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا، مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

साल हो गए, 100 साल किसी को हो गए, लेकिन आज भी लोग उनका ज़िक्र करते हैं, उनको याद करते हैं। अल्लाह ताला उनके वसीले से लोगों की दुआओं को कबूल करता है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने अपने आप को, अपनी औलादों को, अपने माल को, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक इस्तेमाल किया और फिर सारी ज़िंदगी ज़िक्र में, याद इलाही में गुजारी। अल्लाह ताला आज भी उनकी कब्रों पर हर लम्हे करोड़ों रहमतें नाजल फरमाता है, और जो लोग उनकी बारगाह में जाते हैं अल्लाह ताला उनको भी उन रहमतों से और उन बरकतों से मालामाल फरमाता है। मेरे मुसलमान भाइयों, अगर हम ये चाहते हैं अल्लाह ताला हम पर ज़िंदगी में भी बरकतें अता फरमाए, मरने के बाद भी हमारी औलादों पर और हमारी कब्रों पर अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए, तो इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में हम सबको चाहिए कि अल्लाह ताला के अहकामात पर उस तरह अमल करें जिस तरह उसका हुक्म है। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फरमाए और आपको भी इन बातों पर सुनकर समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।